0: gengi da dong de na lo la bei jie sa xiu gan san le long da zha bi yi se na da bei cha ye na da wei wo ge po zhang bo da la se men da da bin qin jin lo se men de ma bu jie ge yang ge su bin qin jin lo de zhi zhan ba ge qi dong ge jia
1: Jago, ये द कॉलेज चले से चेली के टोंकिंग के जब जरा मतलब तना यूं जो ये द कॉलेज हम तो लोग कैदा चंबो यार तो ये दीजे दाव को पढ़ा पढ़ा लास्ट में तो कॉलेज तो तभी ना लासा जल है यार लासा जा जागो जील रही है लासा जल है तो लासा लो पढ़ा लागे थांचियां लो चेन लो डोंडे है तो दाव हाज तो ठहरा पढ़ा लागो दाव हाज रोगा तो उधर चले तो पता लहा समय तो तना जरे पे कांचें की जूस न कौन जाम बलिंग की जेंचा समय तो नाजो पता लहा से समा की खाने किया बात जोन ट्रिबा तो माँबो यारो कौन दावा हो क्यों पता लहा द कल चले थे ये ना मारा हुआ क्या रिचेन न बुक नोट अच्छे वन रासो तना जी ट्रिबा यार गेम लोस गए तो ची तो तो दम ही रे तेरे रे तो लगे लोस की तो दान यहाँ पर चल लो तेरे उन तेरे लते नई कांसों लगी थे गेटा ना चिबू रहा यंग दसों लते मम मम माँब लोचों की समा के तलो कौंगा चिबू रहे दंगा
0: Lasa nganzo ka tene se chosa re genche ka tseik sa zong tene jene nganzo ka chando ka yujun de la ka yue se nanda de la tue pa pui banda de la ga yin chuan pa ka rei jie da rei yi ye na pe kan chi ka jion de ka mek cha chan ka kanda me pa ka tue ni ka ta tene ka sanu kuja chenpo je ka yi zong me se yi rei ni tene che xie de tsa ma ta jene nganzo ka so so ka payu chun chu je la ga bo rgo la nye ne je ka yu zhu chenpo je la ga yi rgo la di nye pa lan la ta nyo da te kene lan zhe pa yi na che ka san na
1: ta cha ka trawa de pa ya pa chit dang sa trawa de ya pa chit ye san zo do ka nga ki mao che shi tu ju de ka la rong nye ka payu 창도를 저런도 지코는 이렇게 파일을 뜯으면 지코를 뜯으면 이제 말아. 내가 지금 너는 이렇게나 진짜 내가 등이는 기와 참은 도서지. 또 아무도 가로냐 파일을 더 받아. 파일을 더 받은 되게 휴도로 랑쇼근 거네. 내가 원년에 배준다다 지금 원년에 지코들이나 더 봐 이제 들어와. 내가 내가 지금도
0: 제라 게 렌테야 나베 한삼보다 세나로라 지소소가 된가나 다지 뉴반다 태는 뉴바테 주베존데 지쇼 가인선의 몸보지게 소소가 요쇼 간여 로마지라 차이시데 잠바 가와인데 잠 요쇼 옌바가 지 링네에 난다 데초 초레마 토바네 파카자 당학데 조 인세 안다네 소소가 야 다조네 지샤 로널마도 옌바데네 시네 이네야 겐크다다 소문나기가 간초 무서야 로이지게 토담보 소소 파유라 가이 데칼레 미리라 가이 자갈라 가이 파유라 가이 메나 아장자 데초 가이 케오데서 온토지 바레 데라 데라 다른 시당 토네가 로이세 메데라 Jansan me sergo, jaka ka tsan me, tsan me sere. Yina ya lu yi kaya rongwa jila, yang nindu segre, da de la koran koran la soje gwe jirgo la. Da genchen da yina lu mambun danda la, da ji sa zong zi lu chunjil hasu. De nang lo na, da genchen ka sa na, che ka jun dun zi hien, xiang yin bi ka, san wu de jina re, su hien da bu da jina re ndu sa gen, san lu tunyo ya na.
1: Yo yo yo yo, lasu. Tati rongye ge yichi te sa zong da ji, zong ji ge go lo zi chir sena, rongye de chir sena te chang da wahi. Tanda ji yin chang jil, zo zi rongye chir sena, mima ge chan de yong ge jirwa, mazu ge chan de yong ge jirwa. Zong pa pa sikhi yin na, mazu ge chan de yong, mazu ge chan de pa pa pan ro, tanda ji mian dan de ka lo che ge zima, yi sa zong da yong na ka bore.
0: Re
1: la. Re ma re tanda re. Degi to nende ka lo, rongye ge mazu chan de ro, mazu ge chua de, tun she de, gang re re, tsama de ge chan da jir re, gong da jir re, tanda de ka lo rongye ge rongye ge 다제다 힌주제 된다 치러서 고속이 좋아하던 용주를 어떻게 참아도 갈 돈 휴디 제차든 된 건데 치러서 마초다다 카트인드나 되게 저거 좁아 부서이나다 갈 저거 좀들어도 갈 소신 답은 라소 답도 요즘 말해서 저도 녀다는 뭐
0: 你那得了去。那是，你个菜种就长得昨天忙出个过的呀，他，等出来生锈这样子的，要么那忙出个，对，俺当不进去等着热干了。热干了。他那有忙不进的，那，现在俺个托呢。 他们平常做的人呢，他们做的每个人都了，农村人呢，这年轻人呢，这电脑也按做卡巴的有才的怎么？他们平常做的人呢，忙不进，按做通用的过了。对，人家的怎么？数据个人呢，得去，得在干部嘛，是不是？电视、打扫、钱包，但脚步嘛，他等这个南巴的了，被下家干部等的先做个多了。那伊啥种先开钱呢？等这看了，这个啥子的？按做杨贵说，罗秋南巴的，罗伊些啥种先开这个让么来了？该人也难着，等你外面人。
1: 你的做军事研究提了，那些啥种这个没把跟人家推过噻？他等于那个做的过了，你像那个第二个朋友的等等，打算吃个松板那些的，让那个水军得了的过了，等到这个金牛的金牛等到人多，等到吃完的，我拿了等到第一次的那个跟你现在那个打算吃个松板那些，但人家来了，主要的就是我们你了，是吧？第二个杨哥这个是我们我们学校给人家得了这个。 当前他就渐渐的也不是这么多了，这个啥种这个是那卡不嘞？但是俺是抢到了别人的几颗人把给他那给你们人的黑个的忙不要紧嘞，抢个黑把那些嘞，抢到个招，马上给给，等清个是把，嗯，将那个菠萝给掀过，得了擦开了个擦住啥个垃圾，擦嘛那个你们人的黑个嘞，得了就是，老穷这个的个了，他，嗯，水军给人的个了，就是，除了皮筋给弄到了个，得了都个了，干烟的就看到个了。 金牛金牛是热上车的，因那了，都这个打算送把那个山东这个原来些呢，这个水军给得了的，早晚的等不及送嘛，对吧？山东给三把给吃的是呢，一个等这不就天个是那搞不了，对吧？得了都搞了，水军给得了都搞了，外头呢，他妈给铜钱不记得，现在解决不到，用个喇叭都让说抢到个原来些呢，得了这个铜钱解决不到呢，看这鬼都给起热上车的嘛，说啥家也忙了到的了，等个了抢到了人呢，等他爬上车不得，酒店的酒店给，等他。
0: 忙不要嘞，到了这个铜钱不就结个多少？俺两个在那讲，这水军给早晚的嘛呢？就这三点说话的那卡路，东北来上车的，可东北来上是，水军给早晚的嘛呢？就三点跟这不到一个几个是呢，卡不来。是，
1: 等着接了个两组，把就那送不那一点。是是是是。那说等着的怎么俺说，现在个跟抢到了搭档俺做个罗琼个南苑个，崔达等着总看个南北的跟着那吃的有的搭档。他打算了。 陆军做开心开心就要了，等到了。但陆军在这人那个看中的忙不来，他打算吃的是那个了。当个司机的呀，几个给他弄着送，我不觉得呢。那个司机给人们怎么了？军人在大批当中搞了的，铜钱不着。人等等等呢，打算陆军这个吃的是呢，司机给人那了，干部接看的忙不多，忙忙抢到了看的忙不多看的，白看呢，装脚看的，一起只看的，两个呢，一小猪抢这个搞了的，等到的吃的是那。 那个罗琼王文都，罗琼王文嘞，热到了都搞了，罗琼这个早都搞了，他第二个啊，给他吃的是那通家的鸡，这个他妈都搞了，什么嘞？热到了，水军给得了都搞了，国外的军啊也把得了都搞了，早晚弄得早晚来上阵的，水军给得了都早晚都当不进前头呢，这山东给搞了都搞了。
0: 这个这不也不就团结来上阵了？是啦，搭档俺做个啥种托呢？那这几年，老家看了周秋来的，你呢？这个司机也不要了的，送你叔叔给他，这赔偿到了得要那样，养卡巴的，早晚托你忙不用求来的，你那样手机给早晚的等不及凑个啥人事给了，送不能给的。但手机给早晚凑个，那给个啥呢？搭档困难不拉几，等着写秋啥人事给个，等着热娃生的嘛就，他等这个。
1: 蓝天这些段呢，跟个跟着这些段啥的，啥种性格的，他原先个也才总把不大不的呢，工作个数据个天呢，工作跟着写出啥的。但是这个做了做那吃了是哪子？几年吃了是哪？忙车轮着就都几年了，忙车的忙车我轮着呢，等到了忙车的其他的工作的，那得讲讲个大那里就忙了，我做到娘道。
0: 嗯，
1: 渐渐把这个马超给干了，把这个日子把这个尿到了，那尿到了多呢，出完事就到这马超轮着就到呢，做全部积累是。你奶奶吃了是呢，这个都靠了，让你给吃了是，先把那个让给一头了跑，你跑就到这跑就到，等来讲，等了后种解决的，还讲给钱不就来是，等到俺当不就来。
0: 嗯，
1: 么子第二个他做了这个，他妈的打算给人吃个松板那样的个，卡巴个的，你通给拿了刚刚那他妈的靠了，后种解决啥了，等马超轮着就到可能。
0: 做真正上战斗，热了，给人家打落松就拉死了。
1: ལོ་ཡི་ག་ཚེ་མང་པོ་ཅེ་ཟོང་དེ་ཡ་རེ་ད་ཆེ་ག་པ་ཆ་ཆེ་ཤོ་དང་ཚེ་ག་ནོ་ནེ་དང་ཡི་ག་ཚེ་དེ་ཡ་བུ་ཅེ་ཤོ་ཟོང་སང་སང་ག་དང་དེ་ག་ཡི་ཚེ་ཨ་ཡ་ ང་གི་ཡི་ཏོ་ཏ་ཡ་ད་ཁར་མ་ཀེ་ད་ཆེན་པོ་ད་དང་ལ་མ་རེ་ཏོ་ན་ལ་མང་ཚུལ་ལ་དེ་ཁེ་ཟུང་ཁ་སོ་སོ་ན་མང་ཚུལ་ལ་ཡ་ཁེན་ད་གེ་ད་ཁོ་སོ་ལ་དེ་ལ་ཅིན་ཆེ་རེ་སོ་ན་ཁོ་ཚུ་གི་པ་ཨན་ཅེ་ཆ་ཅེན་ཡོ་མ་རོ་པ་ཨན་ཅེ་གི་ཆ་ཅེན་བ་ཉི་གི་ཚུལ་སོ་ན་ཡ་མ་ལ་ཡ་ཆང་དོ་ཝོ་ཏོ་ཅེ་ཆེན་པོ་ན་དུག་སོ་

0: 去黑面子去桑油了来吧俺都碰到马姐了容索容姐姐用进来也不对的寻到了龙月被命的最巴了俺家大都呢平出马赛西就得弄了人别弄了人
1: ये टेम थुजर तेने टेमा थुजन ये से हुए से तेने छछु मरी पाला गावा तूने फिनसे मासे शेचु ना नरसो
2: के ले पामो ताता चेरों के ठक पुनेन जावे तुले पाले रे